0: Sim, Fátima. Posto avisar.
1: Zulu Radio Network.
2: दामकल एम्बुलेंस को फोन नंबर जो सके समय पर चाहिए।

0: सफल बनाने हम अभियान में सहभागी बनो आज देखी सजिलो तथा फर्क ऑनलाइन बैंकिंग को फायदा उठाओ भक्तिनाथ विकास बैंक द्वारा जनहित में जारी भक्तिनाथ विकास बैंक जनता बैंक में बैंक बैंक जनता में जानू पर्द
1: स्वास्थ्य कार्यालय को जनहित में जारी संदेश
2: पोषण युक्त खाने पूरा जीवन का रंग
1: स्वास्थ्य जीवन को आधार हो संतुलित र पोषणयुक्त आहार विशेष गरी गर्भवती महिला सुत्केरी आमा र पांच वर्ष मुनिका बाल बालिकाहरूलाई पोषणयुक्त खाना को विशेष आवश्यकता पर्दछ। दैनिक खाना में दाल भात हरियो तरकारी फलफूल दूध तथा अन्य पोषणयुक्त खानेकुरा समावेश गरौं। जन्मेको एक घंटा भित्र शिशुलाई स्तनपान गराऊ। छ महीनासम्म शिशुलाई आमाको दूध मात्र खुवाऊ। छ महीना पछि स्तनपान सँगै उमेर अनुसारको पूरक खानेकुराहरू शुरू गराऊ। आइरन भिटामिन ए र जिंकयुक्त खानेकुरा नियमित सेवन गराऊ। जंक फूड धेरै नुन र अस्वस्थकर खानाबाट टाढा रहौ। कुपोषणले बाल बालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा नकारात्मक असर पार्ने गर्छ। त्यसैले हामी सबै मिलेर पोषणयुक्त समाजको निर्माण गरौं। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बु।

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 MHz
2: तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलुदुर्कुम नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु।

0: पुलिस दमकल एम्बुलेंस को फोन नंबर जुनसुक समय में चाहन सकता कम टपा वा सबले देखने ठाव में राख
1: सार्वजनिक हित का उज्यालो को अनुरोध
2: नेपाल बैंक लिमिटेड का कर्जा ग्राहकहरूलाई ब्याज छूट सहित कर्जा चुक्ता वा नियमित गर्न आउने बारे अत्यन्त जरूरी सूचना यस ब्याङ्कबाट कर्जा उपभोग गरी विक्रमसम्म 2079 साल चैत्र मसान्त अगाडि खराब वर्गमा वर्गीकरण भएका बकेउता सावाहरू 1 करोड़सम्मका खराब तथा अपलेखित कर्जा ग्राहकहरूलाई विक्रमसम्म 2083 साल आषाढ मसान्तभित्र योजना अनुसार ब्याज छूट सुविधा सहित कर्जा चुक्ता गर्ने अवसर प्रदान गरिएकोले सम्बन्धित कर्जा ग्राहकहरू

सड़क निर्माण कार्य संबंधी अत्यंत जरूरी सूचना। कालू हिंदी सड़क निर्माण कार्य फुटिंग हुई नमुसी तर्फ तीव्र गति में अगाड़ी बढ़ी रहे हुआ निर्माण क्षेत्र तल्लो भीक नसित खमजी आसपास का स्थानीय बासिंदा घास दौरा तथा पशु चौपाय सुरक्षित क्षेत्र तर्फ मात्र लैजान तथा अवसर द्वारा विशेष सावधानी अपनाउन इसी सूचना मार्फत अनुरोध कर निर्माण कार्य सह सुरक्षित समय में संपूर्ण हो सभी को सहयोग को अपेक्षा सड़क उपभोक्ता समिति सालों शुरू।

0: 社会知識の実践を参考にしてください。
1: आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित

0: Saiu rádio, solo é
1: Solo FM 101.2 MHz. Ujjwal bhavishyako lagi hamro abhiyan.
2: Sanche. Solo FM. Studio time.
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुर्गुंडा नगर पालिका पांच सोल खुम्बू
4: आदरणीय श्रोताबिन तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सुन एफएम सुन एफएममा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न नेपाली लोकगीतहरू

0: रेडियो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: संक्षेप सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम को साथमा डिजिटल कलरला तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलु दुर्गुन नगरपालिका पाँच

0: सड़क निर्माण कार्य संबंधी अत्यंत जरूरी सूचना। सालो हिन्दुसी सड़क निर्माण कार्य फूटे हुए मनुष्य तर्फ तीव्र गति में अगाड़ी बढ़ी रहे हुआ निर्माण क्षेत्र तलभीत निश्चित खमजे आसपास का स्थानीय बासिंदा घास दौरा तथा पशु चौपाई सुरक्षित क्षेत्र तक मात्र नजान तथा अवसाद गुंडा विशेष सावधानी अपना इसी सूचना मार्फत अनुरोध कर निर्माण कार्य सहज सुरक्षित समय में संपूर्ण होना सदैव सहयोग को अपेक्षा सड़क उपभोक्ता समिति सालों से लिखुंगे। हटेरिका दीदी यह नया घर बनाने कस्तो तनाव को काम रहें बिजली को सामान कि बजार का चार चार वा पसल चारे पत्ते पाए ओह अब सामान लेना काठमंडू नहीं जान पर्ने हो कि क्या धक बहन तिमी कस्तो सामान छौ बिजुली को सामान लेना काठमंडू किन जाने हाम्रै सुलुकुमा सब थोक पाइन्छ त ए हो र दिदी कहाँ पाइन्छ म त खोज्दा खोज्दा थाकिसके हौ नसुनु बहिनी सुनु दुखुमा नगरपालिका ओडा नम्बर पाँचमा रहेको शान्ति स्टोर एण्ड सप्लाई खानी त्यहाँ बिजुलीका सम्पूर्ण नयाँ सामानहरू होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा पाइन्छन् बोर्ड आधुनिक स्मिथ वाइरिङका सामान जे खोज्यो त्यही तयार लौ नयाँ सामान पनि पाउने पुरानो सामान पनि मर्मत हुने यो त ढुङ्गा खोज्दा बेलुका मिले जस्तै भयो नि दिदी
1: हजुर बिजुली को भरपर्दो सहयात्री शांति स्टोर एण्ड सप्लायर्स सोलु दुखुंड नगर पालिका वडा नंबर पांच सल्लेरू सोलुखुंड यहां बिजुली का संपूर्ण सामान होलसेल तथा खुद्रा मूल्य में पाने का साथ ही नया तथा पुराना सामान मरमत भी थप जानकारी का लागि संपर्क नंबर गुरूकुल नारायण श्रेष्ठ 97 63 00 57 84 विवेक श्रेष्ठ 98 62 82 00 00 सुनी दुखकुंडा नगरपालिका 5 सैलरी।

0: 김 진수에서 향으로 퍼지게 들어사이.
1: बाबा बच्चों का बचाओ यंत्री हिंसा सामाजिक अपराध हो बालबाल का यंत्री हिंसा को दुखी मूल हिंसा समिति असंतोष साथ परिचित मतदार एसिटी बाक्ष अभिभावक ने आपका छोराछोरी को व्यवहार ख्याल रख बालबालिका को चाल चलन पानी बेहोरा अस्वाभाविक परिवर्तन आयोग होने पाए उन्हींसंग तत्काल पूरा कराओ बालबालिका सुबह नियमित संवाद कराओ आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में

सोलू खुंभू जिला के सोलू दुखुंदर नगर पालिका वड़ा नंबर 10 तापिन चैंगा स्थित ओंछू आधारभूत माध्यमिक विद्यालय का लगी एकजना बच्ची अंग्रेजी शिक्षक को आवश्यक पड़े हुआ इस सूचना मार्फत संपूर्ण में जानकारी कराई युवा सुविधा खाने बस्ने को सुविधा विद्यालय द्वारा ही उपलब्ध कराई तलब आपत्ति पुरस्कार प्रदान पद अंग्रेजी शिक्षक एकजना आवश्यक न्यूनतम योग्यता कक्षा 12 उत्तीर्ण वास्तु भन्दा माथि सिर्फ सामान्य कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान भएको हुनुपर्ने छ आवश्यक कागजातहरू नागरिकताको प्रतिलिपि फोटोकपी र शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्र थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बरहरू 9 विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष 98 6 41 74 र फुरी शेर्पा गोष्ठी सञ्चालक 98 41 15 90 82 सोलु तुकुन्दर नगरपालिका वडा नम्बर 10 7 3 0

0: नंबर 98-59-94-94 र 98-63-68-64-18 वर्षा इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड सर्भिस सेन्टर सोलु दुतकुण्ड नगरपालिका पाँच सल्लरी सोलुखुम्बु
1: राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कदेखि 30 मिटर भित्र
2: जंगल का सीमा घर आदन

0: रेडियो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Soundcheck. Studio FM. The studio time.
2: It's 6 p.m.
0: I'm Cheikh Kusatna. New Star Digital Color Lab. Tatha Dwaramai Offset Press. Sonu Dutkunda Nagar Palika 5 Sonu Kumbu.

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो
3: स्टूडियो टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलुदुत्कु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु।